0: अब तपाईँहरूमा सौल्य शुल्कमा भरपर्दो सेवा दिनका लागि
1: चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा सहित तारकेश्वर 10 लोकतान्त्रिक चोकमा
0: शुभम इन्टरनेसनल हस्पिटल।
1: हाम्रा उपलब्ध सेवाहरू
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा,
1: एक्सरे सेवा,
0: यूएसजी इको सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: सुविधा संपन्न लैब को व्यवस्था,
1: 24 घंटा फार्मेसी सेवा, जनरल ओपीडी सेवा तर्फ
0: जनरल मेडिसिन स्त्री तथा प्रसूति रोग, छाला रोग, मुटु रोग, मूत्र रोग, बाल रोग, श्वास प्रश्वास संबंधी, हार जोड़नी संबंधी समस्या को उपचार, सर्जरी, ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी, मनोचिकित्सक परामर्श सेवा का साथ साथ ही होल बॉडी चेकअप को समेत व्यवस्था रहेको छ।
1: थप जानकारी को लागि
0: शुभम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तारकेश्वर 10 लोकतांत्रिक चोक,
1: फोन नंबर
0: 01 40 27 300।

0: तपाईको पल पलको साथी रेडियो हरपल 90.9 मेगाहर्ज।
1: घुसे जाओगे क्या?
2: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: फ्रेश गरौ माइन्ड।
1: रेडियो हर्पल 90.9 मेगाहर्ज तपाईको पल पलको साथी।
2: हेलो हेलो हेलो साहब, कदरदार
3: मियां, माइक में घुसे जाओगे क्या?
4: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: रेडियो हर्पल 90.9 मेगाहर्ज तपाईको पल पलको साथी।
1: इम्प्रेस करने के लिए तो लोग 200 रुपए के फूल खरीद लेते हैं, पर ये 2 घंटे में मर जाते हैं। पता नहीं क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं लोग फूल देकर के।

बेहतरीन, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद हो ना हो, तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।